0: salt. It's the most popular seasoning in the world. And India, one of its biggest producers. It's an industry built on the labor of the Agarias, who work in extreme conditions in the country's salt deserts.
1: आप देखते हो तो अंदर से रोना आता है। ऐसे आदमी इतने हमारे देश के लिए इतना करता है।
0: Workers believe the government ignores their pleas for help, while traders keep most of the profits. But the salt industry's leading figures say ensuring the community's welfare is not their responsibility.
2: हमारा तो business है, लेकिन इनकी तो जिम्मेदारी है सरकार की। वो पल्लू झाड़ रहे हैं, उनको पूछो।
0: 101 East investigates the hardships faced by the workers who supply the salt from India's deserts that ends up on our dinner tables. In India's western state of Gujarat, a vast salt flat desert stretches across almost 5,000 square kilometers. It's estimated that 30% of India's inland salt is harvested here by a community of salt workers known as the Agarias. The term comes from the Gujarati word agar, meaning salt.
3: Rudra, boot lena.
0: Kishan Bhai Maharaj is getting ready for another round of backbreaking work. He lives in the desert with his wife and two kids for 8 months every year when the seawater recedes after the monsoon. His 13-year-old son Rudra often helps him.
4: एकदम फिट हो जाएगा उसको हम छूटा पाड़ रहे हैं हर रोज ऐसा करना पड़ता है हर रोज दंतारा खींचना पड़ता है
0: किशन्स फैमिली हैव टॉयल्ड हियर फॉर सेंचुरीज ही जॉइंड द ट्रेड व्हेन ही वाज जस्ट 8 इयर्स ओल्ड
4: हम 8-10 पीढ़ी से ये अगरिया परिवार है और हमारी जो अगरिया की जिंदगी है वो ऐसी है बदतर है कि पूरा का पूरा दिन रात लकड़ा कादेव कीचड़ में हाथ जटा के रहना पड़ता है अगर रात को सो गए तो भी हमें नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा पाटा में पानी भरा हुआ होता है और वो कच्ची मिट्टी से बना होता है कब किस टाइम पे पवन आ जाता है और कब टूट जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है
0: एट द एंड ऑफ अ गुड सीजन किशन कैन होप टू मेक बिटवीन $350 to $500 फॉर हिज लेबर ही होप्स हिज सन विल हैव अ बेटर फ्यूचर
4: हमारी जिंदगी तो इसमें गई लेकिन उसको पढ़ा लिखा के कुछ बनाना है मेहनत मजदूरी कुछ भी करके
0: फॉर ऑल द हार्डशिप्स रुद्र सीज हिज फादर्स सैक्रिफाइसेस डिफरेंटली
5: पापा की मदद करता हूँ इसलिए अच्छा लगता है मेरे पापा भी मुझ पर गर्व है उन्होंने पढ़ा नहीं है फिर भी इतने पाटे का काम करके सर काम करके मुझे पढ़ाना चाहते हैं इसलिए
0: मेकिंग सॉल्ट बाय हैंड इज एग्जॉस्टिंग वर्क Agarias pump highly saline groundwater from deep beneath the desert floor into shallow pans. The water eventually evaporates

0: मगरियाओं के लिए, इसको किसी भी किसी एमएलए का फंक्शन हुआ, किसी का भी गवर्नमेंट ने किसी ये ध्वज वंदन होता है राष्ट्रीय मतलब कुछ भी हो इसमें उसका ऑर्डर कर देते हैं, जो इसके लिए है उसको लाभ कुछ नहीं है।
1: The Gujarat government says it has assigned 12 mobile health units to serve Agarias through the salt season. As we cross the desert, a salt worker flags down the van asking for help. But just as the doctor gets out to assist, he receives an urgent phone call.
2: Rathod charu mati main kidu tu hello peche ma jo ke ne vache ame patient jota da ne emne record karu kitlo upar rasta ma che
3: वो रोक रहे थे पर अब हम ऊपर से फोन आया कि आपको उधर पहुंचना ही पड़ेगा। ये फटाफट जवा दो, अब क्या है रोकता नहीं, फटाफट जवा दो।
1: When we arrive at the temple, only a small number of patients seek treatment. None appear to be salt workers. Even organizers here acknowledge that there's a severe shortage of services for Agarias.
4: આ પ્રસંગ પતી ગયા પછી રણમાં અગરિયાઓની આ લોકો સેવા કરે એમાં અમે વાંધો નથી, પણ અમારી એક એવી રજૂઆત છે કે જે ચીંઝુવાડા ગામની જે ગાડી ફાળવેલી છે એ છેલ્લે 6 મહિનાથી અમદાવાદમાં રિપેરિંગ પડી છે અને એના કારણે અગરિયાનો જે સુવિધા મળવી જોઈએ મળતી નથી.
1: As we leave, the van's driver Chintan pulls us aside.
0: મેં આયા 17 સાલ હોય કે સ્ટાફ પૂરા કભી ભરાઈ નહીં. આપ દેખતે હો તો અંદર સે રોના આતા હે કે એસે આદમી ઇતને हमारे देश के लिए हमारे लिए इतना मीठा, जो खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए, मीठू, मीठा नहीं होगा तो खाने में मजा नहीं आएगी, वो हमारे लिए इतना करता है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, हमारे हाथ में नहीं है.
1: To find out how widespread this problem is, we travel about 100 kilometers to Gujarat's west coast, where thousands more workers harvest salt. At a health clinic in the region, we join Dr. Prajapati.
5: आपको वहाँ पे जाके आउटरीच करना है, यूनिटी के साथ काम करना है, ठीक है? चलो.
1: Today, Dr. Prajapati's team is vaccinating children living in the salt pans. Their first patient is this 10-month-old baby.
6: बस, थैंक यू.
5: तो ये केस में क्या, इनका 9 महीने तक यहाँ पे रहते हैं तो हम जहाँ जब भी आते हैं तो इनको हम सर्विस भी दे पाते हैं, उनका हेल्थ एजुकेशन भी कर सकते हैं और इनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं.
1: At another settlement, they treat a man with a severe skin infection.
5: क्या क्या चाहिए? बेहाथ मचे?
7: बाथ मा?
5: बताओ.
1: Doctors say prolonged exposure to salt can leave workers with chronic skin infections, cracks, burns, and painful lesions.
5: अब तुमने दवा आपू तुम रेगुलर करजो एना थी फरक ना पड़े तो एक बार पीएचसी आजो, पीएचसी मिठी दो का तो पछि चामडी ना डॉक्टर ने एक बार बताओ पड़सो.
1: Other common complaints include chronic pain, deteriorating eyesight and reproductive health complications. But the doctor says there's only so much he can do.
5: वो हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है नहीं, रिसोर्सेज कम बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा इश्यू है रहता है. हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे इश्यू है.
1: Shortly after the storm, we visit Kishan's family again. His son Rudra is preparing for an important exam.
8: आपका सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट विषय कौन सा है?
9: गणित.
8: जब आप रण में होते हो,
9: हाँ.
8: पढ़ाई करने में मुश्किल होती है?
9: हाँ, यहाँ लाइट नहीं होती इसलिए दीवे से करना पड़ता है, पर पवन लगता है तो दीवा भी उलझ जाता है इसलिए.
1: Watching Rudra study brings back difficult memories for Kishan.
10: दुख बहुत होता है कि अगर आज मैं मेरे बाबा मेरे को पढ़ाते लिखाते तो मैं ये मेहनत नहीं करता, और मेहनत करना हर इंसान को ज़रूरी होता है, मेहनत करने से कोई वो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाए लिखे होते हैं उनको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कलम से होता है, और ये मेहनत नहीं है, ये मजदूरी है.
9: पगला ना एमना तरफ बढ़िया.
1: द नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र गेट्स रेडी फॉर स्कूल. इट्स ओनली अ शॉर्ट वॉक अवे फ्रॉम द फैमिलीज हट.
7: Bye.
1: This desert was declared a wildlife sanctuary in the 1970s to protect the endangered Indian wild ass. That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So, the Gujarat government has set up about 2 dozen bus schools for Agaria children.
11: ધોરણ 6 થી 8 નું હિન્દી નું પેપર છે. પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
1: But advocacy groups have repeatedly warned the schools suffer from teacher shortages.
9: वहां अलग-अलग साहब होते हैं जो 1 से 8 तोरों को बनाते हैं. और वहां अच्छे से समझाया जाता है और दर एक विषय में और यहां घड़िए और ऐसा आते विषय पे नहीं आते.
1: There are no desert schools for older children.
11: महसूस होता है कि ये इस इन बच्चों में भी कुछ आईक्यू पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पास.
1: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agarias.
7: પાટિયાર છાપ કરતા નહીં હો જો પાટિયાર એકદમ ચોખ્ખા છાવ જે એક તો ઉડણ હે અસલ
12: ઓર યે સબ બેગ કહાં જા રહે હે સર
13: યે યુપી મે એમપી મે
12: યે સબ આપકા હે
13: સબ યહાં સે યે દીવાલ સે વહાં લાસ્ટ તક મેરા હે કરીબ 10000 ચોરસ મીટર કી જગહ હે
1: હિંગોર ભાઈ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ટ્રેડર્સ ઇન ધ એરિયા હી પેસ એડવાન્સસ ટુ એઝ મેની એઝ 100 ફેમિલીઝ ઈચ સીઝન ફોર હિમ The storm hasn't been entirely bad for business.
13: Namak ka production kam hota hai to demand zyada rehti hai. To aaj ke samay mein demand achhi hai. Pura area dher ban jayega. Kareeb 17-18 lakh ton namak yahan banta hai.
1: Last year, Hingor Bhai and other traders opened a processing plant to meet rising demand for packaged salt. Today, he's inspecting the production line with his factory manager.
14: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउच की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम
1: मोस्ट अगारियास नेवर सेल डायरेक्टली टू द कंपनीज हुज ब्रांड्स अपीयर ऑन सुपरमार्केट शेल्व्स इंस्टेड देयर सॉल्ट टिपिकली पासस थ्रू मिडलमैन
14: अभी तो अपने पास मान लो एक ब्रांड है कभी 10 ब्रांड हो तो सबके इसके भी आपके जो दोनों मिलेगा
1: Workers say they are often paid less than half a cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay agarias more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
13: Jo agaria kalyankari yojana ka fund hai wo sahi dhang se sarkari manage nahi karti yadi sarkar manage karti तो उनको शिक्षण का आरोग्य का उनके बच्चे के जो भी सुविधा है वो ज्यादा दे सकते
1: हैं बैक इन द डेजर्ट फैमिलीज लाइक किशन्स आर स्टिल वेटिंग फॉर हेल्प
10: चलो अब आपड़े दादे जाइए बरोबर यहां मीटिंग राखेली है
15: सबसे मुश्किल जिंदगी आगरिया की है यहां गुजरात के अंदर लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है यही कुछ पता नहीं चलता हर बार ऐसा हर साल ऐसा होता है लेकिन आज तक सरकार कुछ करती नहीं है अब इस बार भी मीटिंग है अब मीटिंग में हम जा रहे हैं अब देखते हैं कि इस बार सरकार कुछ करती है या नहीं करती
16: आगरिया भयो केवा मनात करता मजूरी अने रण वचारे गुजारो करता ए आवो मेघ रे એ રાજાનો થયો ટાંડો અરે રે કઈક તો નો છે અમારા આશુ
1: ધ મીટિંગ હેઝ બીન ઓર્ગેનાઇઝ્ડ બાય અ ગ્રુપ એડવોકેટિંગ ફોર અગારિયા રાઇટ્સ હરિનેશ પાંડ્યા એન્ડ હિઝ ટીમ હેવ ટ્રાવેલ્ડ ફ્રોમ અહેમદાબાદ ગુજરાતસ લાર્જેસ્ટ સિટી
17: અગર દુસરે કોઈ ટ્રેડિશનલ ઓક્યુપેશન મે એસા ડિઝાસ્ટર આતા तो इस हफ्ते एक हफ्ते के अंदर 15-20 लोगों ने सुसाइड कर लिया होता लेकिन इनका जो जिगर है ये मुसीबतों को झेलने की जो ताकत इनकी है कम्युनिटी की अगर या कम्युनिटी की पूरे रण के अंदर देखें तो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास
18: ह्यूज लॉस
17: है और अगर ठीक से पूरा अगर हमें लगता है हमारा हम जो देखते हैं तो लगता है कि 100-120 करोड़ के आसपास नुकसान
1: The group is calling for a